0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: விவித் பாரதி தமிழ் எஃப்எம் 102.3 கலக்கல் அரங்கம் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. வணக்கம்.
3: குட் மார்னிங் பானு ஃப்ரம் மயிலாப்பூர்.
2: வணக்கம்மா, உங்களுக்கான குறிப்பை கொடுத்துறேன்.
3: இத்தனை நாள் கண்டுபிடிச்சா எனக்கு லைன் வந்ததுக்கு டஃப்பா இருக்க போகுது.
2: டஃப் இல்லை, ஈஸியா சொல்லிடுவீங்க. அது மாதிரிதான் ஒரு குறிப்பு. சந்திரன் வெளி